0: है, उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए। और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है, तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആകാശവാണി റെയിൻബോ FM കൊച്ചി 107.5 മ്യൂസിക്കലി യോഴ്സ്.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആകാശവാണി റെയിൻബോ FM കൊച്ചി 107.5 നിലയ്ക്കാത്ത പാട്ട് പിരിയാത്ത കൂട്ട്.

0: സഹേലി
1: सुनने वाले हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
2: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
3: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही है ये ऊपर से लेके नीचे तक
2: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
3: बात तो बिल्कुल सही है। और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
2: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी के ये जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें, तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
3: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें, ताकि जो खनिज है मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो। और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले,
2: बिल्कुल
3: है ना। और साथ ही 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है तो पूरी तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे

0: वगैरह ले
1: और
0: लीजिए।
1: बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को, सखियों को, कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे।
0: तरह तरह के व्यंजन
1: में, जी
0: तरह तरह के चावल
1: तरह
0: के व्यंजन,
1: तरह के चावल के व्यंजन आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस तरह का
0: बिल्कुल व्यंजन, क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में। तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा व्यंजन है जो बहुत ज्यादा पसंद है, जो आप बनाते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
1: बिल्कुल। और आरती, आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है, आलोचना। तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं लेकिन आप तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं और क्या आपको लगता है ये
0: आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसको सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं,
1: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए, बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं बड़े, मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ हैं ही आकर्षित। हाँ। अब जो घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए, इसके सकारात्मक विचार भी
0: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
1: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
0: कि इसमें नकारात्मक पहलू क्या है, इसके
1: है?
0: और सकारात्मक क्या है। और साथ ही आज हम बात करेंगे, साड़ियों संसार लेकर आए हैं,
1: तो तरह तरह की साड़ियां आज कहाँ चलने वाले हैं।
0: आज हम साड़ी लेकर आए हैं, कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश में बहुत की है,
1: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो बहुत सारे संदेश लिखने हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
0: तो गीत सुन लेते हैं पहले।
1: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी। तो
0: हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने
0: बिल्कुल।
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए हैं कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि अब आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए वो
1: हाँ,
0: बहुत
1: एक गरिमामयी
0: एलिगेंट, गरिमामय लुक आए। तो कलमकारी साड़ियाँ कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती हैं, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियाँ हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती हैं, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: बहुत बहुत सुंदर लगती हैं।
0: जी
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी,
0: जी
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का तकनीक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई। मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल हैं। प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं।
0: जी, अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती, विष्णु या महाभारत, रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियाँ कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको

0: लेना पसंद करते हैं।
1: जी
0: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
1: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में, एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा, जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा, जो इसमें आकृतियों की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है।
0: जी, कितना इतना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
1: और हम देखिए ना, जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि साड़ी, अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना
0: बहुत मेहनत
1: उसमें
0: है।
1: कितनी मेहनत है, परिश्रम
0: और बिल्कुल
1: है।
0: और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
1: क्या बात है। और कलमकारी डिज़ाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिज़ाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है।
0: जी, और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं।
1: जी, कलमकारी साड़ियाँ आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें, जब इनकी देखभाल होती है, बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज़्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर
0: बस,
1: निकाल देना
0: हाँ
1: है। और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज़ धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आँच पर उल्टी तरफ से ही इस्त्री इसे करना है।
0: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियाँ वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियाँ पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिज़ाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और
0: बिल्कुल,
1: ये सच में, ये साड़ियाँ इतनी सालों तक चलती हैं कि नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी
0: बिल्कुल
1: बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन नहीं लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता,
1: मन नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ
1: बच्चे
0: इसी तरीके,
1: बूढ़े जवान सबका एक ही है बिल्कुल। जिसके लिए सब लोग, मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती, हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे, देखो ना, आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल, और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है।

0: और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है, क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते, और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
0: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चला जा रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ एआई चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
1: बिल्कुल
0: हो रहा
1: ये
0: है।
1: शोध में सामने आया है कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं, और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे, वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती है,
0: और हम शिकायतें करते रहते हैं आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो एक कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए
1: बिल्कुल।
0: थे।
1: और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों को।
0: हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया, वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
1: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है, और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सुदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
1: ऐसे
0: तो
1: गेम बना रहे ना वो लोग कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है, जैसे कि बच्चों में होता है वैसे ही बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको
0: तो ये
1: फायदा
0: और
1: हो।
0: उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से।
1: और सबसे बड़ी बात है दीपक कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके के वर्चुअल दुनिया में रहने के।
0: बिल्कुल, और इसी को लेके देखो ना कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है, वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
1: बिल्कुल, और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार, जीवन सीधा सादा था, यारों का मेला भी था, तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी, जब से आई नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले, इससे सीखा ज्ञान का पान कर लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर

0: खूब सुनाते हैं, नींद उड़ गई उनकी लेकिन रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल। डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने दवा खोज कर खाते हैं, उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है,
1: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
0: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला जी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना,
1: बिल्कुल,
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। और साथ में कहती हैं फायदा तो मुझे यही नज़र आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज़ का एक संतुलन उन्हें ज़रूरी है।
1: ये जो चीज़ें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी हैं, अगर कोई इफ़ेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें ना फंसें, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं, वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीज़ों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है, इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फ़ायदेमंद है कि वो अपना दवाइयाँ मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत फ़ायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीज़ें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीज़ें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज़ कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीज़ें जो बुरा असर अगर आप पर नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल सही
1: जब तक आप
0: और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
1: जी,
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी, बिल्कुल,
0: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं CCTV टाइप लगा दी जाती हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं और

0: टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
1: बिल्कुल नहीं,
0: बस अगर उसका सही
1: किस तरीके
0: से संयमित
1: और
0: इस्तेमाल
1: करना है। बुजुर्गों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर एक हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीजें हैं।
0: जी
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखती है कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है। मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है। और बताती हैं कि वो, मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध भारती भी फोन भी जो है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
0: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

छुपिया लगाते बनी मन चली छुप के छुपा के छुपी नजर बचा के चुप चुप चली

0: तो अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाहवाही तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रसयुक्त ऐसी चीज़ है जो किंतु जो लोग आलोचना

0: कृष्णा सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
1: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
0: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भाव ना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है। सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
0: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
1: तो अब क्या करना चाहिए?
0: एक गीत सुनना चाहिए।
1: चलिए

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही
1: खाने की
0: है।
1: इच्छा। तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन, जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है, जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहले पहले रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ, गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात है।
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसे इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, आधा कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है। फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम हैं, काजू हैं जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं। और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल की जो चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़ी लगती होंगी। और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
0: चलिए
1: तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा, इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है, जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेल कर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई हैं?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ, और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से। और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गाँव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं, ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूं। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियां हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रेन भी वाइट होता है, और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने

0: नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट
1: जी,
0: आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
1: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
0: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो ह्यूमैनिटी के ऊपर। मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है, ऐसा ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं चाहे वो सोसाइटी में हो हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहां इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
1: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और
1: जी,
0: सबसे रिलेट होता है।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज़ प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूँकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आए और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पर सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में
0: जी।
1: तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है
0: जी।
1: तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोलें या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियाँ कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पर उनको एम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि

0: फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मॉरल सपोर्ट रहेगा। बट
1: बिल्कुल
0: उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज़ थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वायरमेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टुडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेड्सकेप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं। शुरू किया था फीमेल फेटिसाइड से,
1: जी
0: स्किलिंग से, सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। वो कोविड से शुरू किया है, फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने के वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही है। ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
1: क्या बात है।
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ पायलट
1: जी
0: प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफ कोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा। उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेड्सकेप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा। और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया।
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है।
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे। यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता है।
1: अच्छा,
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं।
1: वाह
0: तीन
1: वाह,
0: से 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं।

0: वही 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया, डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली आप ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और ऑल द क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई, लेकिन मैंने वहाँ पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई

0: मुंबई में ही एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पे डाल के रोड पे भीड़ लगा के बैठे हैं। तो मुझे रियलाइज हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। 2 बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया। तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया और स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट 2 और पेशेंट की हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: फ्लाइट में थोड़ी पैनिक हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन को हुआ था तो वो भी एक जान बचाए, जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहाँ पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए। तो फिर वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था, रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
1: लेकिन ये
0: अगर
1: कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई। आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
0: पहले तो कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे, अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे 2 फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारे ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमिडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे, सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकेंड पीपल टू कोलैप्स
1: जी
0: व्हेन
1: जी
0: हार्ट फेल्स। तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं, 2014 से। तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए। अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी MOS की मिनिस्टर थी। तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है,
1: जी जी
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको। एक्सप्लेनेशन के लिए आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता
1: कंट्रीब्यूशन
0: है।
1: बिल्कुल
0: और अगर हमारे देश में, अगर देख, पहले 2% ही था और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए,
1: जी
0: तो वो एक अच्छा मकसद है। एक ज़माने में, मैं 2000 की बात कर रही हूँ, कि कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था। CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था,
1: जी
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल, मेरी कम्युनिटी हो, या पुलिस हो, या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि CPR करना है। तो
1: लोगों में
0: उस
1: ये अवेयरनेस आई है
0: अवेयरनेस,
1: कि
0: बहुत
1: ये कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है।
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है, बट एडॉप्टेशन नहीं आया है और इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि हमें एक ने बोला, अरे डॉक्टर हम CPR, मुझे तो आता था लेकिन मैं, डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था। तो मैंने बोला देखो, अगर आप CPR नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फ़ायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है, लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप CPR कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा पहला, तुरंत किसी ने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप CPR करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहाँ पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो, और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30 से 60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीज़ें जाने या ना जाने वो कोशिश बहुत करते हैं।

0: मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया, और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है। और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, और इजिली मॉड्यूल्स हैं। तो मैं टोटली ओपन हूँ कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को CPR आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेड्सकेप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर CPR सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहां पर एक गाना लाइनअप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूँगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो, क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था,
1: वाह वाह,
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज़ दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको ज़रूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये एक तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को सीए था, तो वो जो लेडीज़ थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है और उसकी पूजा के लिए, जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने, कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूँगी, अरे मैं उस जगह जाऊँगी उसके बाद करूँगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लम्प, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लम्प था. तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी, तब मैं बायोप्सी करूँगी, तब मैं ये करूँगी. मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं
0: था, प्रायोरिटी नहीं थी,
1: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज़ के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं.

0: ट्रीटमेंट को टाइमली उसका फॉलो अप उसके, तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की वो रेगुलर चेकअप पे कर, 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है। अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी ना हो मेडिकल मॉडर्न जानकारी ना हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली, ये बेहद खतरनाक है।
0: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था तो उसने गूगल किया कि मेरे को, फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था।
1: ओह
0: लेकिन
1: गॉड,
0: उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए और जब आई तो काफ़ी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं वो, जो सोशल मीडिया होता है वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज़ सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज़ जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज़ उसकी यूज़ करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज़्यादा है, मतलब एज अ जोकिंगली, बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको, आपको तो
1: जी
0: इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाज़म ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो उसके साइड इफ़ेक्ट हुए,
1: जी
0: उस साइड इफ़ेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
1: सेम दवा।
0: हाँ सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे ही घर की नहीं है, ये हर घर की है, क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है और ये दर्द का है, तो
1: यस
0: वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई है, एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उसे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया, और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम करी, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गेन्स पे डैमेज करके चली आई हैं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता। और यहाँ एक और गाने की जगह है और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: तो मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके

0: फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे। जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पोर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक
1: जी
0: डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है। वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, पर जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो
1: जी
0: उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना। ये
1: क्या
0: गाना मुझे
1: बात है,
0: बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज टू सिंग अ लॉट।
1: सुनते ही गाना।

डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की, जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं।

0: also I'll do my homework, preparing myself, spending time with my kid. And quite deeply rooted हूँ, family oriented I am, but definitely I have a very great family also. The kids are very good, mother-in-law is very loving, caring, father-in-law बहुत like all are very nice. And I spend time, I like to write also. So अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ. एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग. सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है, बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है. बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली. अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी. मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो,
1: अच्छा जी,
0: कभी टीवी देखा नहीं ज़्यादा. बट बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी.
1: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीजें लॉन्च करने जा रहे हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
0: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है. पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ और कॉन्स्टिट्यूंट क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में. और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में. और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें. आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट
1: ओहो
0: और 78 MP
1: हो, क्या बात
0: पार्लियामेंटेरियन
1: है।
0: सपोर्टिंग. और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया, जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू
1: जी
0: सपोर्ट आवर मिशन. बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज़ करें, न कि कियोज़ में यूज़ करें.
1: क्या
0: और
1: बात
0: पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है. तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है. अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं.
1: जी
0: और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है
1: जी
0: कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर. सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं. और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी, सब में ये बातें चल रही हैं. और मैं एक जरूर, बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं. वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिसिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव. इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: जी
0: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए. तो
1: जी
0: ये बहुत बड़ा चीज़ है. और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज़ करिए और सी टू इट के वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें.
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच.
1: आज की मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता। सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी, जो

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो ने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

आग आग है सांसों में, अड़ी रहे चट्टानों से, भीड़ का जंगल दुनिया है तो लड़ी है ये अंगारों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद, वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान

रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।